0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वीं का मिड्स में दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो ने फ्रांस के अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव में मिड्स के महागिरजाघर में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए तीन बातों, धार्मिकता, न्याय और शांति को तीन निशानियों, मरुभूमि, वाटिका और निवास स्थल के रूप में चिंतन किया। संत पापा ने कहा, पहला पाठ में नबी इसाइयास को हम धार्मिकता, न्याय और शांति के रूप में ईश्वरीय राज्य के आने के बारे में कहते सुनते हैं। वे हमारे लिए तीन निशानियों को प्रस्तुत करते हैं, मरुभूमि, वाटिका और निवास स्थल। मरुभूमि एक संयम और शांति का स्थल है जहां न्याय स्थापित किया जाता है। कहने का अर्थ, संहिता जो लोगों को अच्छाई के मार्ग में चलने को मदद करती है। यह हमें त्याग और बलिदान की भी शिक्षा देती है। दूसरी निशानी हमारे लिए वाटिका के बारे कहती है जहाँ न्याय राज्य करता है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के प्रभाव को व्यक्त करता है जहाँ एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ईश्वर की योजनाओं में अपने को संयुक्त करता, जो उसे पूरी तरह पल्लवित होने में मदद करता है। हमारे लिए तीसरी निशानी घर है, शांति का एक निवास। संत पापा ने कहा, एक घर अपने में एक पत्थर की संरचना से बढ़कर है। यह मानव की उपस्थिति और प्रेम का स्थल है। इस अर्थ में नबी के शब्द हमें इस बात की याद दिलाते हैं, एक दुनिया कमियों से भरी है, एकता का निर्माण सिर्फ करुणा के कार्य द्वारा हो सकता है। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार भी हमें इस बात का जिक्र करता है, अत्यधिक हिंसा से ग्रसित दुनिया में जहां हम तोल मोल और घमंड को विभिन्न स्तरों पर पाते हैं, यीशु हमें मरुभूमि को मरुधान में परिवर्तित करने, वाटिकाएं लगाने और घर का निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। वे हमें वह मार्ग दिखलाते हैं जो क्षमा, दया और उदारता की ओर ले चलती है। हम ध्यान से अपने और अपने चारों ओर देखें, बदले, हिंसा और परित्याग की भावनाएं किन चीजों को लाती हैं हमारे अंदर और हमारी दुनिया दोनों में। ऐसे क्रूर मनोभावों से उत्पन्न होने वाले रिश्ते और सिस्टम मानव के लिए कैसा भविष्य लेकर आएगा। आप में से जो इस धरती की संतान हैं, जो आपसी संघर्षों से टूटी हुई है, अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि यह सच नहीं है कि बदला लेने वाला क्षमा देने वाले से अधिक मजबूत है। मेल मिलाप केवल तब संभव है जब कोई क्रोध के कड़ियों को तोड़ने का साहस करता है। अतः संहिता, न्याय और परिवर्तन शांति के एक मार्ग में कदमों स्वरूप हैं, जो एक व्यक्तिगत यात्रा से शुरू होती है और समुदाय का अंग बनती है। संत पापा लियो ने कहा कि यहाँ मिड्स में इन मूल्यों की याद करना अपने में महत्वपूर्ण है, जिस पर यूरोप सदियों से निर्मित हुआ है, जहाँ हम उसकी आध्यात्मिक और नैतिक विरासतों को पाते हैं, जो आर्थिक और राजनैतिक धरोहरों को विस्तृत करता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय इसकी याद करते हुए कहते हैं कि इसकी जड़ें नर और नारियों के जीवन तथा कार्यों में है, जो सुसमाचार की शिक्षाओं को जीते उसे घोषित और साझा करते हैं। हम इसे महान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि कृषि और शिल्पकारिता की योग्यता में देख सकते हैं, जिसे मठवासीवाद ने इतिहास में प्रसारित किया।
2: Les principes moraux du monde dans lequel nous vivons nous ont été transmis à partir de là, des principes tels que la primauté de la personne.
1: Sant Papa ne kaha ki naitik siddhant jo duniya ko sanchalit karti hai, ve hame yahan se mili hai. Mool siddhanten jaise ki manushya ki pradhanta aur uski pavitrata tatha sabhi sthitiyon aur sabhi paristhitiyon mein manviya jivan ki aparihariyata, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज की मूलभूत कड़ी स्वरूप, परिवार की प्रधानता, गरीबों और अति संवेदनशीलों की देखरेख, अपरिचितों का स्वागत तथा बुजुर्गों का सम्मान, आपके स्थानीय कलीसिया जो अपनी विशेष स्थिति के कारण नागर समाज और विश्वास के सार्थक गुणों के आधार पर वार्ता की अद्वितीय विरासत को संजोकर रखती है, यह जिम्मेदारी है कि वह इस निष्ठा का एक जीवंत प्रयोगशाला बने। इन सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान बने रहना अपने में कभी भी सहज नहीं है, उनके लिए भी जो हमसे पहले आए। इसके बावजूद निष्ठा और लगनता में हमारे पूर्वजों ने इन्हें एक धरोहर के रूप में सौंपा, ताकि हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकें। साथ ही हमारे अनुभव, हमारी कोशिशें और हमारी कहानियों से इनके मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि होती है।
2: La magnifique cathédrale de cette ville où nous nous trouvons illustre très bien tout cela.
1: इस शहर का शानदार महागिरजाघर जहां हम आज जमा हुए हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह लैटिन्स डुबोन ड्यू के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें 6,500 स्क्वायर मीटर रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, जिन पर धर्मग्रंथ के दृश्यों को चित्रित किया गया है। ऐसा लगता है कि बनाने वालों ने दीवारों को छोटा करने की कोशिश की, जो अब भी ठोस है, ताकि भक्तों तक भरपूर रोशनी पहुंच सके। इस तरह जो कोई भी अंदर आता है, वह हजारों रंगों की झलक के जरिए प्रार्थना और ध्यान के एक शानदार स्रोत बिब्लिया पापरम में डूब जाता है। रोशनी की इस जगह में ऐतिहासिक रंगीन कांच की खिड़कियों की अद्वितीयता को हाल ही में मार्क चागल की प्रतिभा ने और भी निखार दिया। महागिरजा की दीवारों पर बने इस महान यहूदी चित्रकार की कृति ने लैंटन्स डू बॉन ड्यू को एकता और अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता का एक अनोखा प्रतीक बनाया है। यह महागिरजा घर हमें सिखाती है कि ईश्वर की रोशनी हमारी खास पहचान को नहीं मिटाती है, बल्कि अलग अलग इतिहास और संस्कृतियों को शांति के एक शानदार पिचकारी में जोड़ती है, जो हमारे समय में बहुत जरूरी है, जो नए बंटवारे और झगड़ों से टूटी है। जब हम इन रंगीन कांच की खिड़कियों के बारे में सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि यूरोप का भविष्य एक जैसा होने में नहीं, बल्कि मतभेद के तालमेल में है, जहां अतीत के घाव ऐसी जगह बन जाते हैं जिनसे रोशनी चमकती है। संत पापा लियो ने कहा, इस निशानी में हम कलीसिया की पहचान को पाते हैं। हम उन संरचनाओं का उपयोग करते हैं जो सुसमाचार की ज्योति को फैलाने में मदद करती है। इन रंगीन खिड़कियों के बिना संत स्टीफन महागिरजा घर चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर रहा होता।
2: Avec ces vitraux, elles deviennent des livres qui nous rassemblent pour faire mémoire d'histoires merveilleuses.
1: इन रंगीन खिड़कियों के द्वारा, यद्यपि वे खिड़कियां पुस्तकें बनती हैं, जो हमें नायकी, अच्छाई, करुणा, प्रेम और नैतिक सुंदरता की याद दिलाती हैं, जिनकी ओर हमें उदारता और साहस में आने तथा उन्हें अपने साक्ष्यों में प्रस्तुत करने को कहा जाता है। कृतज्ञता और विश्वास के भाव में जैसे जैसे फ्रांस की मेरी यात्रा खत्म हो रही है, मैं मिट्स के समुदाय से यह साझा करना चाहता हूँ, जो पहले से कहीं ज्यादा आज यूरोप और दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनने को बुलाई जाती है, और मैं इसे कुमारी मरियम और आपके संरक्षक संतों की देख रेख में सुपुर्द करता हूँ।
2: On a confiance aux prières de la Vierge Marie et de vos saints patrons.

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी 4 दिवसीय प्रेरित यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की और 28 सितंबर की शाम वैटिकन वापस लौटे। मेड से रोम वापसी की विमान यात्रा में परंपरा के अनुसार पत्रकारों से बातें हुई, जिसमें उन्होंने युद्ध और उन्हें बनाए रखने वाले आर्थिक फायदों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कलीसिया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपनी आवाज उठा रही है। कुछ लोग हथियार उद्योग से अमीर हो रहे हैं, जबकि इन अरबों रुपयों का इस्तेमाल दुनिया में भूख जैसी समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। सोमवार शाम को मेट्स से रोम के लिए उड़ान भरते समय पोप लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरित यात्रा में उनके साथ आए 80 से अधिक पत्रकारों से बात की। पोप ने अपनी बात फ्रांस की यात्रा का विवरण देकर शुरू की और पत्रकारों द्वारा उनसे पूछे गए कई बड़े सवालों के जवाब दिए। पोप ने कहा, मैं अंग्रेजी में बोलकर शुरू करूँगा और फिर अगर आपको अनुवाद की ज़रूरत हो तो हम उसमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपके काम के लिए फिर से धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप पिछले 4 दिन काफ़ी व्यस्त रहे और इस तरह यह एक बहुत गहन कार्यक्रम था। 4 दिन सचमुच कई आशीर्वादों से भरे थे। मैं कहूँगा कि चमत्कार ही था, खासकर लूर्द में बिताया गया समय। इतने सारे बीमार और पीड़ित लोगों के साथ चलना, उनके साथ रहना और यह देखना कि कैसे ईश्वर की उपस्थिति की कृपा कई अलग अलग तरीकों से दिखाई देती है, लोगों के दिलों को छूती है, उनका जीवन बदल देती। और एक कहावत का इस्तेमाल करूं तो बीमारों, बुजुर्गों और उन लोगों की प्रतिष्ठा वापस लाती है जिन्हें समाज के कुछ हिस्से में छोड़ दिया जाता है। इस तरह चारों दिन कई चिन्ह, कई भाव और कई प्रतीकों को महसूस किए गए और व्यक्तिगत रूप से मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला, खासकर उन युवाओं को हिम्मत देने के लिए जो निश्चय ही कुछ खोज रहे हैं। स्टेडियम में यह साफ दिख रहा था। शाम को फ्रांस के आसपास के 80,000 युवा एकत्रित हुए थे और उन्होंने जोश, खुशी और उम्मीद बांटी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इसे पाया और दूसरों के साथ साझा भी करेंगे। इस प्रकार इन 4 दिनों में हमने जिन कई चीजों को संपन्न किया और जिया, उनमें से मैं कहूंगा कि ये कुछ खास बातें थी। इसके बाद संत पापा ने पत्रकारों के कई सवालों के उत्तर दिए। पहला सवाल, जो वैध है वह जरूरी नहीं है कि नैतिक हो। पोप का यह कथन फ्रांस में हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने की तरफ इशारा करता है। फ्रांस में धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, जो धर्म और राजनीति के बीच एक फर्क है। क्या आपको लगता है कि जब यह जरूरी हो, जब सब कुछ दांव में हो, तो अंतःकरण की प्राथमिकता के नाम पर इस सीमा को पार किया जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो क्या आपने वह रेखा पार की? इस सवाल के उत्तर में संत पापा ने कहा, मैं कहूंगा कि कलीसिया और राजनीति या कलीसिया एवं राज्य के बीच जो फर्क है उससे मैंने नहीं तोड़ा और मैं आपको मानिफिका उमानितास पढ़ने या दोबारा पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां मैंने पहले भाग में, पहले कुछ अध्याय में कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत के बारे में बात की है और कहा है कि जब कलीसिया जीवन की रक्षा के बारे में बात करती है, जब वह सामाजिक धर्म सिद्धांत के सवालों के बारे बात करती है, तो हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं, हम लोगों के जीवन में सुसमाचार को लागू कर रहे हैं और वे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां वे कहते हैं, नहीं, धर्म सिर्फ निजी दायरे में होना चाहिए, लोगों को अपनी मर्जी से करने दें, लेकिन एक राज्य के तौर पर हमें अलग रहना होगा। इस तरह जब मैं फ्रांस गया तो मैं मुख्य रूप से सुसमाचार का प्रचार करने, सुसमाचार सुनाने गया, यीशु ख्रिस्त जो स्वयं कहते हैं उसे पुनः पुष्ट करने गया। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ जो यीशु हमें देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कलीसिया जीवन की रक्षा करना सिखाती है और इस बात को बहुत गहराई से मानती है। इसलिए यह जानते हुए कि फ्रांस में हाल ही में कानून को मंजूरी मिली है, यूरोप के दूसरे देशों में भी दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह जीवन के अंत के सवालों पर बहुत बहस चल रही है, लेकिन लूर्द जैसे जगह पर लोग बहुत गहरी चीज खोज रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि बीमारी या विकलांगता या अलग अलग तरह के दर्द के बीच भी उनके जीवन का मतलब है। कलीसिया खुद यीशु की तरह उन लोगों के करीब रहना चाहती है और उन मूल्यों को मानना चाहती है जो जीवन खुद अपने आप में रखती है। इसलिए संत पापा ने कहा,
अगर वह राजनीति है तो मैंने वह किया है, लेकिन फ्रेंच राजनीति में शामिल होने के लिए नहीं, यह सिखाने के लिए कि कलीसिया असल में क्या मानती है। मारी कार्मेन नामक एक 87 साल की विकलांग महिला, जिसे मैड्रिड में उस घर से बाहर निकाल दिया गया जहां वह रहती थी क्योंकि वह किराया नहीं दे सकी। इस घटना के संदर्भ में इनिगो डोमिंगेज ने संत पापा से सवाल किया, आप पूरे यूरोप एवं दुनिया भर में मौजूद आवास समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, जहां संपत्ति की सट्टेबाजी लोगों को शहरों से बाहर निकाल देती है और युवा लोग घर नहीं खरीद सकते। आप इस पूरी समस्या के बारे में क्या सोचते हैं? इसके उत्तर में संत पापा ने कहा कि एक कलीसिया समुदाय या एक मानव समुदाय के रूप में इसके लिए सही हल ढूंढने की जरूरत है ताकि ऐसे मामले ना हों। उन्होंने कहा, आप जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं मैं उसके बारे नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मामला होगा जहां पड़ोसियों, समुदाय, पल्ली, धर्म प्रांत या राज्य को दखल देना चाहिए और कहना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, उस व्यवस्था में क्या त्रुटि है जो एक बुजुर्ग महिला को, जो विकलांग भी है या कोई और दिक्कत भी है, उसे घर से बाहर निकालने की इजाज़त देता है। उन्होंने आगे कहा, कलीसिया फेंकने की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बोलती है और यह न्याय के बारे में बोलती है। यह सभी में इंसानियत की भावना के साथ जवाब देने की क्षमता जगाने, दूसरों के दर्द और तकलीफ के प्रति सच में संवेदनशील होने की सलाह देती है। आज कई देशों में जो घर की समस्या है वह एक ऐसी समस्या है जिससे अकेला पल्ली, धर्म प्रांत या कलीसिया हल नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ एक बड़ी चुनौती है और शायद हमें यह भी मांग करनी चाहिए कि राजनीतिक नेता और अधिकारी इसका हल निकालें। और अंत में संत पापा ने पुनः सभी को धन्यवाद दिया। मैं इस मौके पर उन बहुत से लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पर्दे के पीछे रहे, जिन्हें पोप जैसी वाहवाही नहीं मिलती, लेकिन जो इस यात्रा को एक साथ लाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो चौदहवीं का मिड्स में दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो ने फ्रांस के अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव में मिड्स के महागिरजाघर में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए तीन बातों, धार्मिकता, न्याय और शांति को तीन निशानियों, मरुभूमि, वाटिका और निवास स्थल के रूप में चिंतन किया। संत पापा ने कहा, पहला पाठ में नबी इसाइयास को हम धार्मिकता, न्याय और शांति के रूप में ईश्वरीय राज्य के आने के बारे में कहते सुनते हैं। वे हमारे लिए तीन निशानियों को प्रस्तुत करते हैं, मरुभूमि, वाटिका और निवास स्थल। मरुभूमि एक संयम और शांति का स्थल है जहां न्याय स्थापित किया जाता है। कहने का अर्थ, संहिता जो लोगों को अच्छाई के मार्ग में चलने को मदद करती है। यह हमें त्याग और बलिदान की भी शिक्षा देती है। दूसरी निशानी हमारे लिए वाटिका के बारे कहती है जहाँ न्याय राज्य करता है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के प्रभाव को व्यक्त करता है जहाँ एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ईश्वर की योजनाओं में अपने को संयुक्त करता, जो उसे पूरी तरह पल्लवित होने में मदद करता है। हमारे लिए तीसरी निशानी घर है, शांति का एक निवास। संत पापा ने कहा, एक घर अपने में एक पत्थर की संरचना से बढ़कर है। यह मानव की उपस्थिति और प्रेम का स्थल है। इस अर्थ में नबी के शब्द हमें इस बात की याद दिलाते हैं, एक दुनिया कमियों से भरी है, एकता का निर्माण सिर्फ करुणा के कार्य द्वारा हो सकता है। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार भी हमें इस बात का जिक्र करता है, अत्यधिक हिंसा से ग्रसित दुनिया में जहां हम तोल मोल और घमंड को विभिन्न स्तरों पर पाते हैं, यीशु हमें मरुभूमि को मरुधान में परिवर्तित करने, वाटिकाएं लगाने और घर का निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। वे हमें वह मार्ग दिखलाते हैं जो क्षमा, दया और उदारता की ओर ले चलती है। हम ध्यान से अपने और अपने चारों ओर देखें, बदले, हिंसा और परित्याग की भावनाएं किन चीजों को लाती हैं हमारे अंदर और हमारी दुनिया दोनों में। ऐसे क्रूर मनोभावों से उत्पन्न होने वाले रिश्ते और सिस्टम मानव के लिए कैसा भविष्य लेकर आएगा। आप में से जो इस धरती की संतान हैं, जो आपसी संघर्षों से टूटी हुई है, अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि यह सच नहीं है कि बदला लेने वाला क्षमा देने वाले से अधिक मजबूत है। मेल मिलाप केवल तब संभव है जब कोई क्रोध की कड़ियों को तोड़ने का साहस करता है। अतः संहिता, न्याय और परिवर्तन शांति के एक मार्ग में कदमों स्वरूप हैं, जो एक व्यक्तिगत यात्रा से शुरू होती है और समुदाय का अंग बनती है। संत पापा लियो ने कहा कि यहाँ मिड्स में इन मूल्यों की याद करना अपने में महत्वपूर्ण है, जिस पर यूरोप सदियों से निर्मित हुआ है, जहाँ हम उसकी आध्यात्मिक और नैतिक विरासतों को पाते हैं, जो आर्थिक और राजनैतिक

0: धरोहरों को विस्तृत करता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय इसकी याद करते हुए कहते हैं कि इसकी जड़ें नर और नारियों के जीवन तथा कार्यों में है, जो सुसमाचार की शिक्षाओं को जीते उसे घोषित और साझा करते हैं। हम इसे महान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि कृषि और शिल्पकारिता की योग्यता में देख सकते हैं, जिसे मठवासीवाद ने इतिहास में प्रसारित किया।
1: Les principes moraux du monde dans lequel nous vivons nous ont été transmis à partir de là. Des principes tels que la primauté de la personne.
0: संत पापा ने कहा कि नैतिक सिद्धांत जो दुनिया को संचालित करती है वे हमें यहाँ से मिली है। मूल सिद्धांतें जैसे कि मनुष्य की प्रधानता और उसकी पवित्रता तथा सभी स्थितियों और सभी परिस्थितियों में मानवीय जीवन की अपरिहार्यता, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज की मूलभूत कड़ी स्वरूप, परिवार की प्रधानता, गरीबों और अति संवेदनशीलों की देखरेख, अपरिचितों का स्वागत तथा बुजुर्गों का सम्मान, आपके स्थानीय कलीसिया जो अपने विशेष स्थिति के कारण नागर समाज और विश्वास के सार्थक गुणों के आधार पर वार्ता की अद्वितीय विरासत को संजोकर रखती है, यह जिम्मेदारी है कि वह इस निष्ठा का एक जीवंत प्रयोगशाला बने। इन सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान बने रहना अपने में कभी भी सहज नहीं है, उनके लिए भी जो हमसे पहले आए। इसके बावजूद निष्ठा और लगनता में हमारे पूर्वजों ने इन्हें एक धरोहर के रूप में सौंपा, ताकि हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। साथ ही हमारे अनुभव, हमारी कोशिशें और हमारी कहानियों से इनके मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि होती है।
1: La magnifique cathédrale de cette ville où nous nous trouvons illustre très bien tout cela.
0: इस शहर का शानदार महागिरजाघर जहां हम आज जमा हुए हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह लैटन्स डुबोन ड्यू के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें 6,500 स्क्वायर मीटर रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, जिन पर धर्मग्रंथ के दृश्यों को चित्रित किया गया है। ऐसा लगता है कि बनाने वालों ने दीवारों को छोटा करने की कोशिश की, जो अब भी ठोस है, ताकि भक्तों तक भरपूर रोशनी पहुंच सके। इस तरह जो कोई भी अंदर आता है वह हजारों रंगों की झलक के जरिए प्रार्थना और ध्यान के एक शानदार स्रोत बिब्लिया पापरम में डूब जाता है। रोशनी की इस जगह में ऐतिहासिक रंगीन कांच की खिड़कियों की अद्वितीयता को हाल ही में मार्क चागल की प्रतिभा ने और भी निखार दिया। महागिरजा की दीवारों पर बने इस महान यहूदी चित्रकार की कृति ने लैंटन्स डू बॉन ड्यू को एकता और अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता का एक अनोखा प्रतीक बनाया है। यह महागिरजा घर हमें सिखाती है कि ईश्वर की रोशनी हमारी खास पहचान को नहीं मिटाती है, बल्कि अलग अलग इतिहास और संस्कृतियों को शांति के एक शानदार पिचकारी में जोड़ती है, जो हमारे समय में बहुत जरूरी है, जो नए बंटवारे और झगड़ों से टूटी है। जब हम इन रंगीन कांच की खिड़कियों के बारे में सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि यूरोप का भविष्य एक जैसा होने में नहीं, बल्कि मतभेद के तालमेल में है, जहां अतीत के घाव ऐसी जगह बन जाते हैं जिनसे रोशनी चमकती है। संत पापा लियो ने कहा, इस निशानी में हम कलीसिया की पहचान को पाते हैं। हम उन संरचनाओं का उपयोग करते हैं जो सुसमाचार की ज्योति को फैलाने में मदद करती है। इन रंगीन खिड़कियों के बिना संत स्टीफन महागिरजा घर चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर रहा होता।
1: Avec ces vitraux, elles deviennent des livres qui nous rassemblent pour faire mémoire d'histoire merveilleuse.
0: इन रंगीन खिड़कियों के द्वारा, यद्यपि वे खिड़कियां पुस्तकें बनती हैं, जो हमें नायकी, अच्छाई, करुणा, प्रेम और नैतिक सुंदरता की याद दिलाती हैं, जिनकी ओर हमें उदारता और साहस में आने तथा उन्हें अपने साक्ष्यों में प्रस्तुत करने को कहा जाता है। कृतज्ञता और विश्वास के भाव में जैसे जैसे फ्रांस की मेरी यात्रा खत्म हो रही है, मैं मिट्स के समुदाय से यह साझा करना चाहता हूँ जो पहले से कहीं ज्यादा आज यूरोप और दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनने को बुलाई जाती है, और मैं इसे कुमारी मरियम और आपके संरक्षक संतों की देखरेख में सुपुर्द करता हूँ।
1: On a confiance aux prières de la Vierge Marie et de vos saints patrons.

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी 4 दिवसीय प्रेरित यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की और 28 सितंबर की शाम वैटिकन वापस लौटे। मेड से रोम वापसी की विमान यात्रा में परंपरा के अनुसार पत्रकारों से बातें हुई, जिसमें उन्होंने युद्ध और उन्हें बनाए रखने वाले आर्थिक फायदों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कलीसिया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपनी आवाज उठा रही है। कुछ लोग हथियार उद्योग से अमीर हो रहे हैं, जबकि इन अरबों रुपयों का इस्तेमाल दुनिया में भूख जैसी समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। सोमवार शाम को मेट्स से रोम के लिए उड़ान भरते समय पोप लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरित यात्रा में उनके साथ आए 80 से अधिक पत्रकारों से बात की। पोप ने अपनी बात फ्रांस की यात्रा का विवरण देकर शुरू की और पत्रकारों द्वारा उनसे पूछे गए कई बड़े सवालों के जवाब दिए। पोप ने कहा, मैं अंग्रेजी में बोलकर शुरू करूँगा और फिर अगर आपको अनुवाद की ज़रूरत हो तो हम उसमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपके काम के लिए फिर से धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप पिछले 4 दिन काफ़ी व्यस्त रहे और इस तरह यह एक बहुत गहन कार्यक्रम था। 4 दिन सचमुच कई आशीर्वादों से भरे थे। मैं कहूँगा कि चमत्कार ही था, खासकर लूर्द में बिताया गया समय। इतने सारे बीमार और पीड़ित लोगों के साथ चलना, उनके साथ रहना और यह देखना कि कैसे ईश्वर की उपस्थिति की कृपा कई अलग अलग तरीकों से दिखाई देती है, लोगों के दिलों को छूती है, उनका जीवन बदल देती। और एक कहावत का इस्तेमाल करूं तो बीमारों, बुजुर्गों और उन लोगों की प्रतिष्ठा वापस लाती है जिन्हें समाज के कुछ हिस्से में छोड़ दिया जाता है। इस तरह चारों दिन कई चिन्ह, कई भाव और कई प्रतीकों को महसूस किए गए और व्यक्तिगत रूप से मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला, खासकर उन युवाओं को हिम्मत देने के लिए जो निश्चय ही कुछ खोज रहे हैं। स्टेडियम में यह साफ दिख रहा था। शाम को फ्रांस के आसपास के 80,000 युवा एकत्रित हुए थे और उन्होंने जोश, खुशी और उम्मीद बांटी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इसे पाया और दूसरों के साथ साझा भी करेंगे। इस प्रकार इन 4 दिनों में हमने जिन कई चीजों को संपन्न किया और जिया, उनमें से मैं कहूंगा कि ये कुछ खास बातें थी। इसके बाद संत पापा ने पत्रकारों के कई सवालों के उत्तर दिए। पहला सवाल, जो वैध है वह जरूरी नहीं है कि नैतिक हो। पोप का यह कथन फ्रांस में हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने की तरफ इशारा करता है। फ्रांस में धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, जो धर्म और राजनीति के बीच एक फर्क है। क्या आपको लगता है कि जब यह जरूरी हो, जब सब कुछ दांव में हो, तो अंतःकरण की प्राथमिकता के नाम पर इस सीमा को पार किया जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो क्या आपने वह रेखा पार की? इस सवाल के उत्तर में संत पापा ने कहा, मैं कहूंगा कि कलीसिया और राजनीति या कलीसिया एवं राज्य के बीच जो फर्क है उससे मैंने नहीं तोड़ा और मैं आपको मानिफिका उमानितास पढ़ने या दोबारा पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां मैंने पहले भाग में, पहले कुछ अध्याय में कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत के बारे में बात की है और कहा है कि जब कलीसिया जीवन की रक्षा के बारे में बात करती है, जब वह सामाजिक धर्म सिद्धांत के सवालों के बारे बात करती है, तो हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं, हम लोगों के जीवन में सुसमाचार को लागू कर रहे हैं और वे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां वे कहते हैं नहीं, धर्म सिर्फ निजी दायरे में होना चाहिए, लोगों को अपनी मर्जी से करने दें, लेकिन एक राज्य के तौर पर हमें अलग रहना होगा। इस तरह जब मैं फ्रांस गया तो मैं मुख्य रूप से सुसमाचार का प्रचार करने, सुसमाचार सुनाने गया, यीशु ख्रिस्त जो स्वयं कहते हैं उसे पुनः पुष्ट करने गया। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ जो यीशु हमें देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कलीसिया जीवन की रक्षा करना सिखाती है और इस बात को बहुत गहराई से मानती है। इसलिए यह जानते हुए कि फ्रांस में हाल ही में कानून को मंजूरी मिली है, यूरोप के दूसरे देशों में भी दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह जीवन के अंत के सवालों पर बहुत बहस चल रही है, लेकिन लूज जैसे जगह पर लोग बहुत गहरी चीज खोज रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि बीमारी या विकलांगता या अलग अलग तरह के दर्द के बीच भी उनके जीवन का मतलब है। कलीसिया खुद यीशु की तरह उन लोगों के करीब रहना चाहती है और उन मूल्यों को मानना चाहती है जो जीवन खुद अपने आप में रखती है। इसलिए संत पापा ने कहा,
अगर वह राजनीति है तो मैंने वह किया है, लेकिन फ्रेंच राजनीति में शामिल होने के लिए नहीं, यह सिखाने के लिए कि कलीसिया असल में क्या मानती है। मारी कार्मेन नामक एक 87 साल की विकलांग महिला, जिसे मैड्रिड में उस घर से बाहर निकाल दिया गया जहां वह रहती थी क्योंकि वह किराया नहीं दे सकी। इस घटना के संदर्भ में इनिगो डोमिंगेज ने संत पापा से सवाल किया, आप पूरे यूरोप एवं दुनिया भर में मौजूद आवास समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, जहां संपत्ति की सट्टेबाजी लोगों को शहरों से बाहर निकाल देती है और युवा लोग घर नहीं खरीद सकते। आप इस पूरी समस्या के बारे में क्या सोचते हैं? इसके उत्तर में संत पापा ने कहा कि एक कलीसिया समुदाय या एक मानव समुदाय के रूप में इसके लिए सही हल ढूंढने की जरूरत है ताकि ऐसे मामले ना हों। उन्होंने कहा, आप जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं मैं उसके बारे नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मामला होगा जहां पड़ोसियों, समुदाय, पल्ली, धर्म प्रांत या राज्य को दखल देना चाहिए और कहना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, उस व्यवस्था में क्या त्रुटि है जो एक बुजुर्ग महिला को, जो विकलांग भी है या कोई और दिक्कत भी है, उसे घर से बाहर निकालने की इजाज़त देता है। उन्होंने आगे कहा, कलीसिया फेंकने की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बोलती है और यह न्याय के बारे में बोलती है। यह सभी में इंसानियत की भावना के साथ जवाब देने की क्षमता जगाने, दूसरों के दर्द और तकलीफ के प्रति सच में संवेदनशील होने की सलाह देती है। आज कई देशों में जो घर की समस्या है वह एक ऐसी समस्या है जिससे अकेला पल्ली, धर्म प्रांत या कलीसिया हल नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ एक बड़ी चुनौती है और शायद हमें यह भी मांग करनी चाहिए कि राजनीतिक नेता और अधिकारी इसका हल निकालें। और अंत में संत पापा ने पुनः सभी को धन्यवाद दिया। मैं इस मौके पर उन बहुत से लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पर्दे के पीछे रहे, जिन्हें पोप जैसी वाहवाही नहीं मिलती, लेकिन जो इस यात्रा को एक साथ लाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
3: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है।
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है फ्रांस के प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदवे ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
1: Priye bhaiyo evam behno, suprabhat aur su swagatam. Aaj main hal hi mein ki gayi France ki apni preritik yatra ke bare mein zikr karna chahunga. यह मेरे लिए और फ्रांस के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था और इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं पुनः उन सबों के प्रति, नागर अधिकारियों और कलीसिया के प्रेरितों के अलावे अन्य बहुत से लोगों के प्रति जिन्होंने संत पापा से मिलने या गलियों में खड़े होते हुए उनका अभिवादन करने की चाह रखी, जो ख्रिस्त के प्रेरित और शांति के एक संदेश वाहक हैं। सबों को सारे हृदय से धन्यवाद। संत पापा लियो ने कहा कि मैं अपने इस प्रेरितिक यात्रा के विचारों और मनोभावों को संग्रहित करने की चाह रखता हूँ, जो एक मात्र वृहद निशानी पेरिस के नोत्रेडम महागिरजा में केंद्रित था। वहाँ अपने प्रथम पड़ाव में हमने धन्य कुमारी मरियम के आदर में संध्या वंदना की। यह एक बड़ा आनंद भरा समारोह रहा, जिसमें संगीत, गायन और महागिरजा घर की सुंदरता ने हमारे हृदयों को प्रार्थना के भाव में उद्दलित किया। नोत्रेडम के महागिरजा घर को जिस त्रासदी का सामना करना पड़ा, वह इस प्रेरितिक यात्रा को एक ज्योति की निशानी स्वरूप आलोकित करती है, जिसे मैं एक शब्द में पुनर्जन्म स्वरूप परिभाषित करता हूँ। संत पापा लियो ने कहा कि पेरिस का महागिरजा घर, जो 7 साल पूर्व बुरी तरह एक विध्वंसकारी आग से क्षतिग्रस्त हुआ, अब पुनः स्थापित किया गया है, जो पहले की अपेक्षा और भी शानदार है। इस त्रासदी ने हर स्तर में एक सकारात्मक प्रक्रिया की चिंगारी उत्पन्न की है, जिसमें कुछ दृश्यमान और प्रायोगिक हैं, तो वहीं दूसरे को हम आध्यात्मिक प्रकृति में गुप्त पाते हैं। इसकी पुनर्स्थापना कलीसिया, राज्य, नागर और सामाजिक संस्थानों के बीच में एक परीक्षा स्वरूप रही। इस परिस्थिति ने हितैषियों की उदारता, व्यावसायिक रूप में विख्यात तथा कला में प्रखर

0: चाहिए, संत पापा ने कहा। लेकिन उससे भी बढ़कर नोत्रेदेम का महागिरजाघर कलिसे की निशानी है, जो सजीव पत्थरों पवित्र ईश प्रजा से निर्मित है। उन्होंने कहा कि महागिरजाघर में आयोजित संध्या वंदना की प्रार्थना और उसी शाम पेरिस के विशाल खेल मैदान में युवाओं के लिए आयोजित जागरण प्रार्थना के बीच समानता देखना अपने में दिलचस्प रहा। दो अलग अलग जगहें, फिर भी समकालीन घटनाएं जो आध्यात्मिकता के तार से जुड़ी थी, उन्हें क्या जोड़ता है? यह महागिरजाघर नहीं जो पत्थरों या सीमेंट से बना है, बल्कि लोगों का समूह जो यीशु ख्रीस्त को प्रेम करते हैं, क्योंकि वे उनके द्वारा प्रेम किए जाते हैं। नोत्रेदेम में पुरोहितों और उप याजकगण समर्पित जीवन और प्रेरित कार्य में संलग्न लोग थे। वहीं स्टेडियम में फ्रांस की नई पीढ़ी उपस्थित थी। संत पापा ने कहा, केवल उम्र की दृष्टिकोण से नए नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर वे अपने उत्साह में, अपने हृदय की स्वतंत्रता और विश्वास में नए थे। युवाओं ने गाया और नारे लगाए, लेकिन वे शांत भी रहे और ध्यान से सुना। उनके चेहरों में ध्यान और अनुभूति थी, जो युवाओं के हृदय में व्याप्त सच्चाई और प्रेम की चाह को व्यक्त करती थी। मैंने उन्हें अपने आनंद भरे संदेश में कहा,
1: Voi siete i santi di Francia.
0: आप फ्रांस के संत गण हैं। जागरण प्रार्थना आशा की एक महान निशानी थी। यही बात बखिता निवास मिलन के संबंध में सच साबित हुई, जहां हम छोटेपन में ईश्वर के कार्य को देखते हैं, जहां बहुत से जरूरतमंद लोग निवास करते हैं। एक ऐसा निवास स्थल जहां हम सुसमाचार के फलों को पाते हैं, जहां लोग प्रेम में मानव जीवन के सम्मान हेतु निष्ठा में अपने हर दिन के उत्तरदायित्वों को करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यहां हम कलिसे के अंदर एक नवीनता की निशानी को पाते हैं, जो कुछ सालों से प्रत्यक्ष रूप में देखी जा सकती है, मुख्य रूप से युवाओं और वयस्क लोगों के रूप में जो बपतिस्मा की चाह रखते हैं। ईश्वर से इस सुंदर आश्चर्य के उत्तर में फ्रांस में एक प्रांतीय धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे संबोधित करते हुए मैंने नव दीक्षार्थियों और बपतिस्मा प्राप्त लोगों को अपने समुदाय के संग, जहां वे निवास करते हैं, विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा कि मेरी प्रेरितिक यात्रा का चरम बिंदु पलासे दे ला कॉनकॉर्ड था। वहां हमने पुनर्जन्म को एक आश्चर्यजनक निशानी के रूप में अभिव्यक्त पाया। धर्मविधि की सभा, जिसमें विशाल चौराहे पर पुरोहितों, गायक मंडली और लोगों की भीड़ जमा हुई थी, यह एवेन्यू देस चैंपस एलिसीज से होते हुए आर्क डी ट्रायम्फ और उससे भी आगे तक फैली हुई थी। मिस्सा बलिदान के दौरान परम प्रसाद के समय हर किसी को परम प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला, जिसे हर जगह बांटा गया। यही कलिसा का सच्चे पुनरुत्थान उसके पुनर्निर्माण को व्यक्त करता है, जिसे केवल ईश्वर ही कुमारी मरियम की मध्यस्थता से संभव बना सकते हैं। इस भांति यह स्वाभाविक और उचित था कि पेरिस के बाद मैं लूर्द की तीर्थ यात्रा करूं और कलिसा की माता मरियम को अपनी श्रद्धा सुमन प्रकट करूं, जो दुख और मृत्यु की घड़ी में भी विश्वास और आशा की ज्योति को जलाए रखती हैं। संत पापा ने कहा, लूर्द में ईश्वर ने कुमारी मरियम की ममतामयी देखभाल के जरिए सभी लोगों तक, विशेषकर तीर्थयात्रियों और उन लोगों तक जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हैं, आशा और नए जीवन के संदेश को पहुंचाते हैं। यह एक ऐसा संदेश है जिसे मैंने खुले रूप में दोहराना चाहा। हर मानव की जिंदगी, चाहे वह किसी भी हालत में हो, यहाँ तक कि बेहद संवेदनशील स्थिति में भी, अपनी अटूट गरिमा बनाए रखती है। अतः हमें चाहिए कि हम मानवीय संवेदना और विज्ञान की मदद से उसकी देखभाल करें, उसका साथ दें और उसके दुख को कम करने में जरूरी कदम लें। यही कारण है कि लूर्द दुनिया के लिए प्रेम की सभ्यता का एक पवित्र स्थल है। इस संदर्भ में मैंने कुछ लोगों से भेंट की जो दुर्व्यवहार के शिकार हुए थे। मैंने उनसे कहा कि वे दूसरे पीड़ितों तक मेरी और पूरी कलिसा की इस बात को पहुंचाएं कि हम उनकी बातें सुनना चाहते और उनके साथ चलते हैं, ताकि उन्हें चंगाई प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि हम उनके जीवन पर हुए जुल्म को समझते हैं।

हैं और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। संत पापा लियो ने अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव मेट्स के शहर, जो फ्रांस और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण प्रभावित हुआ, जिक्र करते हुए कहा कि यहीं पर रॉबर्ट शूमन ने अपना काम किया, जो यूरोप को एकजुट करने की प्रक्रिया के मुख्य प्रेरणा स्रोतों में से एक थे। असल में युद्ध से हुई तबाही के बाद शांति की एक परियोजना स्वरूप आधुनिक यूरोप का जन्म हुआ। हम कह सकते हैं कि पेरिस के नोट्रेडेम में आग लगने से जो हुआ, वही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के साथ हुआ। इस तरह यूरोप का पुनर्जन्म हुआ, जो लोकतंत्र, एकजुटता और लोगों के बीच भाईचारे के उन सिद्धांतों पर आधारित था, जिनका श्रेय काफी हद तक ख्रिस्तियता की जड़ों को जाता है। आज भी इन्हीं बुनियादों और इसी अहम जीवन शक्ति के साथ यूरोप के इस परियोजना को एक ऐसी दुनिया में नया रूप दिया जा सकता है जो अत्यधिक वैश्विक हो गई है, जहां अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता अहम भूमिका निभाती है। इस वजह से मिड्स में मैं अलग अलग धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों से भेंट की, जिन्होंने मेरी उपस्थिति में वार्ता और शांति के लिए मिड्स अपील का अध्ययन करते हुए उस पर हस्ताक्षर किए। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा कि फ्रांस की मेरी प्रेरितिक यात्रा का विषय वस्तु था जिससे दुनिया को जीवन मिले। ये यीशु के शब्द हैं जो उनके मुक्तिदायी पूरे प्रेरितिक कार्य को संक्षेपित करते हैं, जो इस प्रेरितिक यात्रा के दौरान हर मुलाकात में सुसमाचार के अर्थ को पूर्ण रूपेण व्यक्त किया। यह हमारी प्रार्थना को प्रेरित करे, जैसे कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस घटना की कृपा हमारे लिए बहुतायत और निरंतर बने रहने वाला फल उत्पन्न करे। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के समापन पर टीग्रे क्षेत्र के सभी पक्षों से लड़ाई झगड़े रोकने की अपील की। संत पापा लियो इथियोपिया के टीग्रे इलाके और उसके पड़ोसी इलाकों अफार और अम्मारा के हालात पर गहरी चिंता के साथ नजर रख रहे हैं, जहां एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है। संत पापा ने कहा, मैं सभी पक्षों से दिल से अपील करता हूं कि वे बातचीत का रास्ता चुनें। हथियारों से होने वाली लड़ाई कभी समस्याओं का हल नहीं करती, बल्कि उन्हें और बढ़ा देती हैं। इसके बाद सिर्फ मौत, तबाही और नाराजगी ही रह जाती है। सिर्फ ईमानदारी से की गई बातचीत ही स्थायी शांति की नींव रख सकती है। और संत पापा को उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिल खोलकर और सही समय पर मदद करेंगे, ताकि जरूरतमंद तक हर तरह की मानवीय सहायता पहुंच सके। इसके बाद संत पापा ने रविवार 27 सितंबर को बोलोनिया में 3 शहीद पुरोहितों, धर्म प्रांतीय पुरोहित उबाल्डो, सलेशियन पुरोहित एलिया कोमिनी और डेहोनियन पुरोहित मार्टिनो कैपेली के धन्य घोषणा के बारे में बातें की। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के एक बहुत मुश्किल दौर में नाजी सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वे अपने धर्म समुदाय के लोगों की सेवा कर रहे थे और नाजी सैनिक इस काम को पसंद नहीं करते थे। ईश्वर के इन सेवकों का सर्वोच्च बलिदान आज के ख्रिस्तियों को अपने भाइयों और बहनों के करीब आने का साहस देता है, खासकर मुश्किल समय में। पोलैंड के विश्वासियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने याद दिलाया कि 30 साल पहले 6 अक्टूबर 1996 को संत जॉन पॉल द्वितीय ने विंचेंसियो लेवोन्यूक और उनके 12 साथियों को धन्य घोषित किया था। ये वे शहीद थे जिन्होंने प्राटुलिन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने अपनी पूर्वी परंपरा के प्रति निष्ठावान रहते हुए कैथोलिक कलीसिया से अपने जुड़ाव और पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ अपनी एकता की रक्षा की। संत पापा ने उनकी मध्यस्थता में मसीह के शिष्यों की एकता और उन कैथोलिकों के हित को सौंपा जिन्हें आज उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा है। उधर डोमिनिकन मठवासी धर्म बहनों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने आज समर्पित जीवन के सामने आने वाले मुश्किलों पर जोर दिया, जिनमें बुलावे का संकट और साझा प्रशिक्षण जैसी चुनौतियां शामिल हैं। बुजुर्ग होते समुदायों, घटती संख्या और काम करने वालों की कमी जैसी मुश्किलों के बीच एक धधकती आग सी स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे आर्थिक और संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। इसमें आपसी तालमेल, अलग अलग संस्कृतियों के मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले ढांचे बनाने जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। इन सब का सामना कैसे किया जाए? सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की सोच के लालच में न पड़कर, बल्कि शांति और खामोशी बनाए रखते हुए ईश्वर की आवाज और उसके बुलावे को सुनते रहना चाहिए। ये वो दिशा निर्देश हैं जिसे संत पापा लियो ने वाटिकन के परमाध्यक्षों के भवन में डोमिनिकन मठवासी धर्म बहनों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग से मुलाकात कर बताया। प्रचारकों के धर्म समाज की ईश सेविका सिस्टर मरिया पेट्रा जोर्दानो के असाधारण गुणों को मान्यता मिलने के कुछ ही समय बाद संत पापा ने इस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। दरअसल संत डोमिनिक के ठीक बाद उनके उत्तराधिकारी बने ससोनिया के जोर्दानो की लिखी बातों से पता चलता है कि शुरुआत से ही इन शुरुआती महिला समुदायों की धर्म बहन मुख्य रूप से चिंतन मनन वाली प्रार्थना और अध्ययन में लगी रहती थी। तपस्या का पालन करते हुए वे धर्म प्रचारकों के प्रचार कार्य में उनका साथ देती थीं और उसी आध्यात्मिक मिशन कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। संत पापा ने धर्म बहनों से कहा कि वे यह पक्का करें कि उनकी सभाएं हमेशा सबसे पहले प्रभु के साथ मिलन के पल हों, प्रार्थना में, एक दूसरे की बात सुनने में, भाईचारे के साथ सुधार करने में और मेल मिलाप में। उन्होंने एकांत जीवन के एक जरूरी गुण के तौर पर खामोशी पर खास जोर दिया।
इसके बाद संत पापा ने कहा कि शांति का महत्व तेज रफ्तार वाली दुनिया में बहुत ज्यादा है। संत पापा ने उनसे कहा कि वे सुने कि आज आत्मा डोमिनिकन चिंतनशील जीवन से क्या कहना चाहती है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले एक बुलावा होता है जिसका हमें जवाब देना होता है। एक ऐसी आग जो जलती है और जिसे बुझने नहीं देना चाहिए, जैसा कि सिएना की संत कैथरीन ने कहा था। संत पापा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, कलीसिया के लिए आपकी सेवा बहुत कीमती है। इसे भरोसे, आपसी मेलजोल और समझदारी के साथ जारी रखें, एकजुट रहें, लेकिन एक जैसे न बनें। परंपरा के प्रति वफादार रहें और नई चीजों के लिए तैयार रहें। चिंतनशील बने, क्योंकि आप दुनिया को ईश्वर के सामने लाने में सक्षम हैं। उधर संत गैब्रियल महादूत के पर्व दिवस पर वाटिकन के संचार विभाग ने 61वें विश्व संचार दिवस के लिए विषय जारी किया, एक नई नज़र, क्लिकबेट के दौरे पर ध्यान देना। इस साल का विषय ख्रिस्तियों को अपनी नज़र बदलने के लिए प्रेरित करता है, फिर से देखना, ध्यान और प्यार के साथ। इसमें कहा गया है कि विषय वस्तु के तेज और कभी न खत्म होने वाले बहाव के बीच कुछ पल का ध्यान खींचने की होड़ वाली अटेंशन इकोनॉमी न केवल हमारी सोचने समझने की क्षमताओं को बदल रही है, बल्कि हमारे आपसी बातचीत की गहराई को भी प्रभावित कर रही है। जब हमारी नज़र दूसरों को परखने या जज करने के बजाय उनमें जुड़ने का फैसला करती है, तो हमारा संवाद बदल जाता है। इसमें कहा गया है कि लोगों पर हर दिन हर पल तुरंत प्रतिक्रिया देने और सतही रिश्ते बनाए रखने की उम्मीदों का बोझ रहता है, जिसके कारण डिजिटल संस्कृति की वजह से सच्चे ध्यान की कमी हो जाती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है फ्रांस के प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापालियो चौदवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज मैं हाल ही में की गई फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। यह मेरे लिए और फ्रांस के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था और इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं पुनः उन सबों के प्रति, नागर अधिकारियों और कलीसिया के प्रेरितों के अलावे अन्य बहुत से लोगों के प्रति जिन्होंने संत पापा से मिलने या गलियों में खड़े होते हुए उनका अभिवादन करने की चाह रखी, जो ख्रिस्त के प्रेरित और शांति के एक संदेश वाहक हैं। सबों को सारे हृदय से धन्यवाद। संत पापा लियो ने कहा कि मैं अपने इस प्रेरितिक यात्रा के विचारों और मनोभावों को संग्रहित करने की चाह रखता हूँ, जो एक मात्र वृहद निशानी पेरिस के नोत्रेदम महागिरजा में केंद्रित था। वहाँ अपने प्रथम पड़ाव में हमने धन्य कुमारी मरियम के आदर में संध्या वंदना की। यह एक बड़ा आनंद भरा समारोह रहा, जिसमें संगीत, गायन और महागिरजा घर की सुंदरता ने हमारे हृदयों को प्रार्थना के भाव में उद्दलित किया। नोत्रेदम के महागिरजा घर को जिस त्रासदी का सामना करना पड़ा, वह इस प्रेरितिक यात्रा को एक ज्योति की निशानी स्वरूप आलोकित करती है, जिसे मैं एक शब्द में पुनर्जन्म स्वरूप परिभाषित करता हूँ। संत पापा लियो ने कहा कि पेरिस का महागिरजा घर, जो 7 साल पूर्व बुरी तरह एक विध्वंसकारी आग से क्षतिग्रस्त हुआ, अब पुनः स्थापित किया गया है, जो पहले की अपेक्षा और भी शानदार है। इस त्रासदी ने हर स्तर में एक सकारात्मक प्रक्रिया की चिंगारी उत्पन्न की है, जिसमें कुछ दृश्यमान और प्रायोगिक हैं, तो वहीं दूसरे को हम आध्यात्मिक प्रकृति में गुप्त पाते हैं। इसकी पुनर्स्थापना कलीसिया, राज्य, नागर और सामाजिक संस्थानों के बीच में एक परीक्षा स्वरूप रही। इस परिस्थिति ने हितैषियों की उदारता, व्यावसायिक रूप में विख्यात तथा कला में प्राखर कार्यकर्ताओं के बीच भरपूर सहयोग को संभव बनाया। संस्थानों, राजनीति और सामाजिक ताकतों तथा नागरिक और आर्थिक जिम्मेदारियां निभाने वाले सभी लोगों के लिए आम भलाई हेतु मिलकर काम करना एक सामान्य बात होनी चाहिए। यही वह संदेश है जिसे मैं फ्रांस के अधिकारियों और यूनेस्को के सदस्यों, शिक्षण हेतु राष्ट्र संघों, विज्ञान और सांस्कृतिक अधिकारियों को देना चाहूँगा, जिनके मुख्यालय पेरिस में अवस्थित हैं। अपने सहयोग का मूलभूत आधार मानवीय जीवन का सम्मान होना चाहिए, संत पापा ने कहा। लेकिन उससे भी बढ़कर नोत्रेदम का महागिरजा घर कलीसिया की निशानी है, जो सजीव पत्थरों, पवित्र ईश प्रजा से निर्मित है। उन्होंने कहा कि महागिरजा घर में आयोजित संध्या वंदना की प्रार्थना और उसी शाम पेरिस के विशाल खेल मैदान में युवाओं के लिए आयोजित जागरण प्रार्थना के बीच समानता देखना अपने में दिलचस्प रहा। दो अलग अलग जगहें, फिर भी समकालीन घटनाएं जो आध्यात्मिकता के तार से जुड़े थे, उन्हें क्या जोड़ता है? यह महागिरजाघर नहीं जो पत्थरों या सीमेंट से बना है, बल्कि लोगों का समूह जो यीशु ख्रीस्त को प्रेम करते हैं, क्योंकि वे उनके द्वारा प्रेम किए जाते हैं। नोत्रदेम में पुरोहितों और उप याजकगण समर्पित जीवन और प्रेरित कार्य में संलग्न लोग थे। वहीं स्टेडियम में फ्रांस की नई पीढ़ी उपस्थित थी। संत पापा ने कहा, केवल उम्र की दृष्टिकोण से नए नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर वे अपने उत्साह में, अपने हृदय की स्वतंत्रता और विश्वास में नए थे। युवाओं ने गाया और नारे लगाए, लेकिन वे शांत भी रहे और ध्यान से सुना। उनके चेहरों में ध्यान और अनुभूति थी जो युवाओं के हृदय में व्याप्त सच्चाई और प्रेम की चाह को व्यक्त करती थी। मैंने उन्हें अपने आनंद भरे संदेश में कहा,
2: Voi siete i santi di Francia.
1: आप फ्रांस के संत गण हैं। जागरण प्रार्थना आशा की एक महान निशानी थी। यही बात बखिता निवास मिलन के संबंध में सच साबित हुई, जहां हम छोटेपन में ईश्वर के कार्य को देखते हैं, जहां बहुत से जरूरतमंद लोग निवास करते हैं, एक ऐसा निवास स्थल जहां हम सुसमाचार के फलों को पाते हैं, जहां लोग प्रेम में मानव जीवन के सम्मान हेतु निष्ठा में अपने हर दिन के उत्तरदायित्वों को करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यहां हम कलिसिया के अंदर एक नवीनता की निशानी को पाते हैं, जो कुछ सालों से प्रत्यक्ष रूप में देखी जा सकती है, मुख्य रूप से युवाओं और वयस्क लोगों के रूप में जो बपतिस्मा की चाह रखते हैं। ईश्वर से इस सुंदर आश्चर्य के उत्तर में फ्रांस में एक प्रांतीय धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे संबोधित करते हुए मैंने नव दीक्षार्थियों और बपतिस्मा प्राप्त लोगों को अपने समुदाय के संग, जहां वे निवास करते हैं, विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा कि मेरी प्रेरितिक यात्रा का चरम बिंदु पलासे दे ला कॉनकॉर्डे था। वहां हमने पुनर्जन्म को एक आश्चर्यजनक निशानी के रूप में अभिव्यक्त पाया। धर्मविधि की सभा, जिसमें विशाल चौराहे पर पुरोहितों, गायक मंडली और लोगों की भीड़ जमा हुई थी, यह एवेन्यू देस चैंपस एलिसीज से होते हुए आर्क डी ट्रायम्फ और उससे भी आगे तक फैली हुई थी। मिस्सा बलिदान के दौरान परम प्रसाद के समय हर किसी को परम प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिला, जिसे हर जगह बांटा गया। यही कलिसिया का सच्चे पुनरुत्थान उसके पुनर्निर्माण को व्यक्त करता है, जिसे केवल ईश्वर ही कुमारी मरियम की मध्यस्थता से संभव बना सकते हैं। इस भांति यह स्वाभाविक और उचित था कि पेरिस के बाद मैं लूर्द की तीर्थ यात्रा करूं और कलिसिया की माता मरियम को अपनी श्रद्धा सुमन प्रकट करूं, जो दुख और मृत्यु की घड़ी में भी विश्वास और आशा की ज्योति को जलाए रखती हैं। संत पापा ने कहा, लूर्द में ईश्वर ने कुमारी मरियम की ममतामयी देखभाल के जरिए सभी लोगों तक, विशेषकर तीर्थयात्रियों और उन लोगों तक जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हैं, आशा और नए जीवन के संदेश को पहुंचाते हैं। यह एक ऐसा संदेश है जिसे मैंने खुले रूप में दोहराना चाहा। हर मानव की जिंदगी, चाहे वह किसी भी हालत में हो, यहाँ तक कि बेहद संवेदनशील स्थिति में भी, अपनी अटूट गरिमा बनाए रखती है। अतः हमें चाहिए कि हम मानवीय संवेदना और विज्ञान की मदद से उसकी देखभाल करें, उसका साथ दें और उसके दुख को कम करने में जरूरी कदम लें। यही कारण है कि लूर्द दुनिया के लिए प्रेम की सभ्यता का एक पवित्र स्थल है। इस संदर्भ में मैंने कुछ लोगों से भेंट की जो दुर्व्यवहार के शिकार हुए थे। मैंने उनसे कहा कि वे दूसरे पीड़ितों तक मेरी और पूरी कलिसिया की इस बात को पहुंचाएं कि हम उनकी बातें सुनना चाहते और उनके साथ चलते हैं, ताकि उन्हें चंगाई प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि हम उनके जीवन पर हुए जुल्म को समझते हैं और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। संत पापा लियो ने अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव मिट्स के शहर, जो फ्रांस और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण प्रभावित हुआ, जिक्र करते हुए कहा कि यहीं पर रॉबर्ट शूमन ने अपना काम किया, जो यूरोप को एकजुट करने की प्रक्रिया के मुख्य प्रेरणा स्रोतों में से एक थे। असल में युद्ध से हुई तबाही के बाद शांति की एक परियोजना स्वरूप आधुनिक यूरोप का जन्म हुआ। हम कह सकते हैं कि पेरिस के नोट्रेडेम में आग लगने से जो हुआ वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के साथ हुआ। इस तरह यूरोप का पुनर्जन्म हुआ जो लोकतंत्र, एकजुटता और लोगों के बीच भाईचारे के उन सिद्धांतों पर आधारित था जिनका श्रेय काफी हद तक ख्रिस्तियता की जड़ों को जाता है। आज भी इन्हीं बुनियादों और इसी अहम जीवन शक्ति के साथ यूरोप के इस परियोजना को एक ऐसी दुनिया में नया रूप दिया जा सकता है जो अत्यधिक वैश्विक हो गई है, जहां अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता अहम भूमिका निभाती है। इस वजह से मिड्स में मैं अलग अलग धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों से भेंट की जिन्होंने मेरी उपस्थिति में वार्ता और शांति के लिए मिड्स अपील का अध्ययन करते हुए उस पर हस्ताक्षर किए। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा कि फ्रांस की मेरी प्रेरितिक यात्रा का विषय वस्तु था जिससे दुनिया को जीवन मिले। ये यीशु के शब्द हैं जो उनके मुक्तिदायी पूरे प्रेरितिक कार्य को संक्षेपित करते हैं, जो इस प्रेरितिक यात्रा के दौरान हर मुलाकात में सुसमाचार के अर्थ को पूर्ण रूपेण व्यक्त किया। यह हमारी प्रार्थना को प्रेरित करे जैसे कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस घटना की कृपा हमारे लिए बहुतायत और निरंतर बने रहने वाला फल उत्पन्न करे। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के समापन पर टीग्रे क्षेत्र के सभी पक्षों से लड़ाई झगड़े रोकने की अपील की। संत पापा लियो इथियोपिया के टीग्रे इलाके और उसके पड़ोसी इलाकों अफार और अम्मारा के हालात पर गहरी चिंता के साथ नजर रख रहे हैं, जहां एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है। संत पापा ने कहा, मैं सभी पक्षों से दिल से अपील करता हूं कि वे बातचीत का रास्ता चुनें। हथियारों से होने वाली लड़ाई कभी समस्याओं का हल नहीं करती, बल्कि उन्हें और बढ़ा देती हैं। इसके बाद सिर्फ मौत, तबाही और नाराजगी ही रह जाती है। सिर्फ ईमानदारी से की गई बातचीत ही स्थायी शांति की नींव रख सकती है। और संत पापा को उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिल खोलकर और सही समय पर मदद करेंगे, ताकि जरूरतमंद तक हर तरह की मानवीय सहायता पहुंच सके। इसके बाद संत पापा ने रविवार 27 सितंबर को बोलोनिया में 3 शहीद पुरोहितों, धर्म प्रांतीय पुरोहित उबाल्डो, सलेशियन पुरोहित एलिया कोमिनी और डेहोनियन पुरोहित मार्टिनो कैपेली के धन्य घोषणा के बारे में बातें की। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के एक बहुत मुश्किल दौर में नाजी सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वे अपने धर्म समुदाय के लोगों की सेवा कर रहे थे और नाजी सैनिक इस काम को पसंद नहीं करते थे। ईश्वर के इन सेवकों का सर्वोच्च बलिदान आज के ख्रिस्तियों को अपने भाइयों और बहनों के करीब आने का साहस देता है, खासकर मुश्किल समय में। पोलैंड के विश्वासियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने याद दिलाया कि 30 साल पहले 6 अक्टूबर 1996 को संत जॉन पॉल द्वितीय ने विंचेंसियो लेवोन्यूक और उनके 12 साथियों को धन्य घोषित किया था। ये वे शहीद थे जिन्होंने प्राटुलिन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने अपनी पूर्वी परंपरा के प्रति निष्ठावान रहते हुए कैथोलिक कलीसिया से अपने जुड़ाव और पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ अपनी एकता की रक्षा की। संत पापा ने उनकी मध्यस्थता में मसीह के शिष्यों की एकता और उन कैथोलिकों के हित को सौंपा जिन्हें आज उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा है। उधर डोमिनिकन मठवासी धर्म बहनों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने आज समर्पित जीवन के सामने आने वाले मुश्किलों पर जोर दिया, जिनमें बुलावे का संकट और साझा प्रशिक्षण जैसी चुनौतियां शामिल हैं। बुजुर्ग होते समुदायों, घटती संख्या और काम करने वालों की कमी जैसी मुश्किलों के बीच एक धधकती आग सी स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे आर्थिक और संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। इसमें आपसी तालमेल, अलग अलग संस्कृतियों के मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले ढांचे बनाने जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। इन सब का सामना कैसे किया जाए? सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की सोच के लालच में न पड़कर, बल्कि शांति और खामोशी बनाए रखते हुए ईश्वर की आवाज और उसके बुलावे को सुनते रहना चाहिए। ये वो दिशा निर्देश हैं जिसे संत पापा लियो ने वाटिकन के परमाध्यक्षों के भवन में डोमिनिकन मठवासी धर्म बहनों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग से मुलाकात कर बताया। प्रचारकों के धर्म समाज की ईश सेविका सिस्टर मरिया पेट्रा जोर्दानो के असाधारण गुणों को मान्यता मिलने के कुछ ही समय बाद संत पापा ने इस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। दरअसल संत डोमिनिक के ठीक बाद उनके उत्तराधिकारी बने ससोनिया के जोर्दानो की लिखी बातों से पता चलता है कि शुरुआत से ही इन शुरुआती महिला समुदायों की धर्म बहन मुख्य रूप से चिंतन मनन वाली प्रार्थना और अध्ययन में लगी रहती थी। तपस्या का पालन करते हुए वे धर्म प्रचारकों के प्रचार कार्य में उनका साथ देती थीं और उसी आध्यात्मिक मिशन कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। संत पापा ने धर्म बहनों से कहा कि वे यह पक्का करें कि उनकी सभाएं हमेशा सबसे पहले प्रभु के साथ मिलन के पल हों, प्रार्थना में, एक दूसरे की बात सुनने में, भाईचारे के साथ सुधार करने में और मेल मिलाप में। उन्होंने एकांत जीवन के एक जरूरी गुण के तौर पर खामोशी पर खास जोर दिया।
इसके बाद संत पापा ने कहा कि शांति का महत्व तेज रफ्तार वाली दुनिया में बहुत ज्यादा है। संत पापा ने उनसे कहा कि वे सुने कि आज आत्मा डोमिनिकन चिंतनशील जीवन से क्या कहना चाहती है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले एक बुलावा होता है जिसका हमें जवाब देना होता है। एक ऐसी आग जो जलती है और जिसे बुझने नहीं देना चाहिए, जैसा कि सिएना की संत कैथरीन ने कहा था। संत पापा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, कलीसिया के लिए आपकी सेवा बहुत कीमती है। इसे भरोसे, आपसी मेलजोल और समझदारी के साथ जारी रखें, एकजुट रहें, लेकिन एक जैसे न बनें। परंपरा के प्रति वफादार रहें और नई चीजों के लिए तैयार रहें। चिंतनशील बने क्योंकि आप दुनिया को ईश्वर के सामने लाने में सक्षम हैं। उधर संत गैब्रियल महादूत के पर्व दिवस पर वाटिकन के संचार विभाग ने 61वें विश्व संचार दिवस के लिए विषय जारी किया, एक नई नज़र, क्लिकबेट के दौरे पर ध्यान देना। इस साल का विषय ख्रिस्तियों को अपनी नज़र बदलने के लिए प्रेरित करता है, फिर से देखना, ध्यान और प्यार के साथ। इसमें कहा गया है कि विषय वस्तु के तेज और कभी न खत्म होने वाले बहाव के बीच कुछ पल का ध्यान खींचने की होड़ वाली अटेंशन इकोनॉमी न केवल हमारी सोचने समझने की क्षमताओं को बदल रही है, बल्कि हमारे आपसी बातचीत की गहराई को भी प्रभावित कर रही है। जब हमारी नज़र दूसरों को परखने या जज करने के बजाय उनमें जुड़ने का फैसला करती है, तो हमारा संवाद बदल जाता है। इसमें कहा गया है कि लोगों पर हर दिन हर पल तुरंत प्रतिक्रिया देने और सतही रिश्ते बनाए रखने की उम्मीदों का बोझ रहता है, जिसके कारण डिजिटल संस्कृति की वजह से सच्चे ध्यान की कमी हो जाती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।